0: यो BFBS गोर्खा रेडियो हो।
1: डॉक्टर हिप्नोटिक मेकिंग एन इलेक्ट कोलैबोरेशन DJ Alex अलोंग विथ मिलियन